चुप चाप पई दिसी एक पक्षी सी, माने बोये कोल सांब के जो रखी सी। पखे बिजली देने पैरां विच रोलिया संदूक।

सब दरिया खेस घबराए सी, वेलां बूटे माने चावा नाल पाए सी, गद्दे बैड देने पैरां च मदोलिया, संदूक मां दा जदों सी मैं खोलिया।

जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई।

E vi per e vi per ma pian, tere viran lardelagna. E vi per ma pian, tere viran lardelagna. Tere vi ma pian ti e jagdi, tere ami ma pian ti e jag, tiri teni bhai. जा सोरे कर दिए ले जा लड्डा परी विदाई, जा सोरे कर दिए ले जा लड्डा परी विदाई।

ताई पहनने आनी बकरी पारोवे, पहनने आनी बकरी पारोवे, जांदी नहीं बराई। चाचे ताए बाबल तेनू अणखां दी गठ फड़ाई, सौरे घर जाती है कर ली फर्जां दी कमाई। जा सौरे कर दिए ले जा लट्टां भरी विदाई, जा सौरे कर दिए ले जा लट्टां भरी विदाई।

होई। जगती रीत अवली अगे जोर नी चलिया कोई, जगती रीत अवली अगे जोर नी चलिया कोई। पटोलिया दी खेड मुक्की, पटोलिया दी खेड मुक्की, वीरां संग रोक मनाई।

मिट्टी दे उत्ते खड़के तू कर दाए मनमानी, भला ना लोचे किसे दा बंदिया कर दाए नित हानी। मिट्टी सब कुछ चुप कर सहंदी रख दी।

0: वाह जी,
1: आप भेटा दे संबंधा विच बंदिया रब नू तू ठगी जाना
0: वाह जी वाह,
1: आप भेटा दे संबंधा विच बंदिया रब नू तू ठगी जाना।

0: मुकंदर जी,
1: है।
0: स्वागत है भाई जी।
1: मुकंदर जी
0: सत
1: सत श्री अकाल।
2: श्री शुक्रिया। सत श्री अकाल सैनी भाई जी, शुक्रिया तुसी मेरे मेरा गला खोल लिया तो मेरी आवाज बाहर आई।
0: जी
2: मैं था सैनी सैनी
0: आई
2: भाई
0: संगी
2: जो
0: कुटी हुई
2: पुट्टी
0: थी।
2: हुई बात है तो हद होगी ना, पुट्टी
0: अरे
2: हुई सी। मैं था 14 मिनटों तो बस मेरे गले च फाहा पाया होया सी, हुण ढिल्ला होया थोड़ा
0: क्या
2: जा। मैं तो जदों सैनी भाई जी गल करते मैनूं आया सी भी शायद मेरी कोई माड़ी मोटी आवाज किसे पासे पहुंच गई होगी।
0: जी
2: जदों सैनी भाई जी ने कहा तो मैं उदों ही मैं गुनगुनाउन लग गया सी गाना, जिहड़े सैनी भाई जी ने गल कही ना उह, ते उह मैं अपने मन च गुनगुनाउन लिया सी उह गाना हौली हौली।
0: नहीं, अपने मुकद्दर जी सिस्टम ऐदां दा हैगा आ कि तुसी नाल दी नाल सुणी जाने हो जेड़ी गलबात चलदी है, पर उन्ना चिर ऑन नहीं होंदी जिद्दां तुसी कहा ना भई जिन्ना चिर मैं नहीं इधरों तैनू नहीं आउंदी। जी
2: नहीं, सैनी भाई जी की आवाज मेरे को आउंदी पई सी।
0: हाँ
2: मैनूं
0: जी,
2: ऐ लगदा सी वी शायद हो सकदा वी मेरी आवाज तुहाडे
0: कई
2: कोल
0: बारी
2: जांदी
0: दोस्त है ना
2: होवे
0: म्यूट कर लेंदे आ
2: ते
0: ते ओह जरूरत नहीं है म्यूट करन दी, ते बिल्कुल
2: हाँ
0: इत्थे
2: हाँ
0: अपने को
2: मैं
0: फायदा
2: ना
0: महसूस।
2: ओ सैनी बाई जी ने तो गल बाद च कीती ते मैं ओ गाना गुनगुनाउन पहले ही लग गया सी। ओ
0: जी जी जी
2: तोड़ नशियां वर्गी लगे आथण वेले नू, जिंद नी माणी तरसे हाय सजणा दे मेले नू।

0: उम्र पर महका जान दे नी। लो
1: बहुत
0: जी, ये सी सूफी कलाम
1: थैंक यू
0: ते
1: जी,
0: एक
1: थैंक यू,
0: सॉन्ग जरा जल्दी जल्दी गुनगुनाना ना जे तरी इजाजत होवे
1: जरूर
0: ते।
1: जरूर,
0: हां
1: आउण दो
0: जी
1: आउण दो
0: जी
1: जी।
0: जी जी

0: बुलिया
1: बात
0: हीरे सस्ते मोल दे वेखे, बुलिया हीरे सस्ते मोल दे वेखे, लाल तकड़ी विच तुल दे वेखे, फुल पैरा

0: लोग हंसते देखे बहुत, पर सुख किसे यार जी
1: वाह
0: नहीं।
1: जी वाह जी,
0: जद अख बंद करके देखिया, जद अख बंद करके देखिया, अंदर एक दरिया।

पर रेडियो दे प्यारे श्रोतियो सिमी सोत्रे जी दी इस गीत दे नाल ही साडा प्रोग्राम गौंदी शाम इत्थे समाप्त हुंदा है। ते समाप्ति तो पहला मैं सारे श्रोतियां दा, शायरां दा, गीतकारां दा, गायकां दा बहुत बहुत धन्नवादियां जिन्हां ने साडे इस प्रोग्राम नूं जिहड़ा चलाउण दे विच साडा सहयोग कीता है। ते अंत विच हरवंसियों वल्लों सारिआं नूं आदाब नमस्कार सति श्री अकाल कुदरत खैर करे। अगले हफ्ते फिर मिलदे आं, तद तक लई दिओ आग्या अलविदा आमीन।

0: शाबाश देंगे ते आगाह बदल लई हौसला देंगे। गोरा बंगा जी थोड़ा दुआबा रेडियो ते निगाह स्वागत है।
1: कि मैं ते मेरे ख्याल ज़्यादा कट्ठे रहने आ, पता नहीं जी लोकी सानू की कहंदे आ। कमरे च मेरे थोड़ियां किताबां ने, बहुती जगह घेरी रंगले ख्वाबां ने, बोलियां ते भंगड़े पौन रात नूं, लिखे फे शायर पन्नियां ते बात नूं, लिखे फे शायर पन्नियां ते बात नूं। रोशनी ख्यालां विच आण घुल जाए, बण के स्याही सोचां उत्ते डुल जाए, खुशियां छत्तण जी महल वखरा, पौड़ियां बन मेरियां ये सथरां, इन्हां विच भेद नहीं कोई लैके जात नूं, लिखे फे शायर पन्नियां ते बात नूं, लिखे फे शायर पन्नियां ते बात नूं। ते गूढ़े गूढ़े रंगां नाल प्यार हो गया, हुण तां शायर इन्हां विच खो गया, रीझ भी सजाई आपे रंग हो गया, मेरा कड़ा उहदी वंग नाल मंग हो गया, आखदे ख्याल इहो प्रभात नूं, लिखे फे शायर पन्नियां ते बात नूं, लिखे फे शायर पन्नियां ते बात नूं।
0: गोरा बंगा तो बाद हुण मैं सदा देण जा रहा हरदीप कौर जसवाल जी नूं। हरदीप कौर जसवाल जी पहला भी साडियां काम महफलां दे विच हाजरी ला चुके ने, अज फिर वो साडे विशेष सदे दे उते हाजिर होए ने। उन्हां दा काम महफल दे विच निघा स्वागत है। हरदीप कौर जी, जी आयां नूं
2: प्यार भरे सारे श्रोतियां नूं सत श्री अकाल। गजल कुत्ते पौंकण उल्लू बोलण गिरजां लाए डेरे ने, कावां रोली चार छपेरे पाग अवले मेरे ने, इंदर अज बरसाता करदे पौणा दी रफ्तार बड़ी, फिर भी पांबड़ मसदे लोको मेरे चार छपेरे ने, चन्न लकोया काले बदल कुप हनेरा छाया है, घर दा रस्ता पटके सज्जन लोकी कहन सवेरे ने, नित सवेरे मत्था रगड़ा मंजल तीकर जान लई, बैठी हाँ कर बार लुटाई बाबे चार छपेरे ने, चालां उस दियां समझ गई गप सुनाउंदे वड्डे ओ, जुमले बाज सिरे दा जापे ओदे रंग बथेरे ने, सूरज वसदे रुसी जाए तारे वी ता संगी हन, तीजा नेत्र खोली लोटे वड्डे तेरे जेरे ने, सूरज वसदे रुसी जाए तारे वी तां संगी हन, तीजा नेत्र खोली लोटे वड्डे तेरे जेरे ने। धन्नवाद।
0: अरे श्रोतियो आओ मैं थोनू इंग्लैंड दे शहर लिस्टर ले चला, ते लिस्टर दे विच साडी कवित्री रह रही है जसवंत कौर बैंस, जेडे आप खुद भी रेडियो होस्ट ने, ते इस दे नाल दी नाल ओ कवितावां जेडियां साडे श्रोतियां ले साडी सिफारिश दे उते सुणाउंदे रहिंदे ने, ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
3: ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ। ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਹੈ ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ।

चुप चाप पई दिसी एक पक्षी सी, माने बोये कोल सांब के जो रखी सी। पखे बिजली देने पैरां विच रोलिया संदूक।

सब दरिया खेस कब राए सी, वेला बूटे माने चावा नाल पाए सी। गद्दे बैड देने पैरां च मदोलिया, संदूक मां दा जदों सी मैं खोलिया।

जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, तेरिया लाडलियां पर

ताई पहनने आनी बकरी पारोवे, पहनने आनी बकरी पारोवे, जांदी नहीं घराई। चाचे ताए बाबल तेनू अणखां दी गठ फड़ाई, सोहरे घर जातीए कर ली फर्जां दी कमाई। जा सोहरे घर धीए लै जा लट्टां भरी विदाई, जा सोहरे घर धीए लै जा लट्टां भरी विदाई।

जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई। जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई। पटोलियां दी खेड मुक्की पटोलियां दी खेड मुक्की वीरां संग रोक मनाई।

0: बीच में भी चेंजेस आ रहे होंगे, उनके
1: जी
0: माइंड
1: जी
0: भी वो
1: हाँ
0: शेप अप कर रहा होंगे कि मैं अगे की करना। इस वेले जे उन्होंने कम्युनिकेशन गैप आ जाए अपने पेरेंट्स नाल या इनफैक्ट कई बार टीचर्स नाल, तां
1: जी
0: वो दे बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। इस करके पेरेंट्स नू टीचर्स नू चाहिए बच्चों नाल उस वेले अपना कम्युनिकेशन जरा वो चंगी तरह बना के रखन, उन्होंने सपोर्ट देन, उन्होंने मोटिवेशन देन। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देना
1: जी जी जी
0: कि जो असं भी बच्चे होंगे सी, मैं मेरे भरा मेरे दोस्त, असं नॉर्मली ये गल सुनते होंगे कि टीचर्स या पेरेंट्स वेले कहते हैं कि ये तो जी क्रिटिकल स्टेज है 8वीं 9वीं 10वीं
1: जी जी
0: की,
1: जी
0: ये 2-3 साल जो बोर्ड की क्लासा पार कर लोगे,
1: बिल्कुल
0: हूँ मेहनत कर लोगे, सारी उम्र तुम ऐश करोगे।
1: यही
0: जे हुण तुसी
1: होंगे
0: ऐश कर ली 2-3 साल दे, सारी उम्र तुहानू मतलब
1: फिर
0: दिहाड़ी करनी पैनी
1: दिहाड़ी में
0: है,
1: पछतावा ही
0: फिर
1: रहेगा।
0: पछतावा रहना है।
1: हाँ जी हाँ
0: असी
1: जी
0: सोचते हैं कि भाई बड़ी मतलब एक वधिया गल दसी, असी 2 साल मेहनत कर लेंगे, 9वीं 10वीं चलो चंगे नंबर आ जाते हैं,
1: बिल्कुल सही है जी
0: फिर जो 11वीं च होंगे टीचर बदल जाते हैं, पेरेंट्स तो चलो उही गल रिपीट करते रहते हैं कि ये 11वीं 12वीं होर तुसी मेहनत कर लो,
1: हाँ
0: फिर
1: जी हाँ
0: सारी उम्र तुहाडे 60 साल जड़े
1: बिल्कुल
0: ऐश दे निकलणगे। असी फिर सोच के मेहनत कर लेते हैं कि चलो 2 साल बोर्ड कर लेंगे
1: दो
0: मेहनत,
1: ऐड हो गए चलो
0: दो
1: कोई गल
0: और
1: नहीं।
0: है
1: हाँ
0: कोई बच्चा कर लेंदा मेहनत कर लेंदा, कोई डॉक्टर
1: जी
0: बन
1: हाँ
0: जाता है 12वीं 12वीं इंजीनियरिंग लाइन चला जाता है, कोई सर्विसेज वगैरह कितने चला जाता है,
1: हाँ जी हाँ
0: उस
1: जी
0: तो बाद फिर एक बार डॉक्टर बन ही गया फिर तो मेहनत करनी
1: फिर तो
0: पैनी
1: गड्डी ली ते आ गई है
0: फिर
1: फिर
0: तो
1: तो
0: आ
1: जाना ही।
0: गया। उस तो बाद मतलब कहने की गल है कि किसी भी तरह नाल इस तरह की गल्ला नाल या कोई होर किसी मोटिवेशन नाल जे बच्चे नु आपा उस वेले सपोर्ट दे दिए, उन्हों आपा किसी तरह रीइंफोर्समेंट दे दिए, तो उसका सारा जो करियर है उस वेले शेप अप हो सकता है। तो उस वेले पेरेंट्स नु टीचर्स नु ये बहुत सोचने की लोड़ है कि किस तरह अपने बच्चों नु अपने अपने विद्यार्थियों किस तरह इस चंगी सपोर्ट दे सके।
1: बिल्कुल सही जी। ये तो यही एक तरह का कह लो कि क्रॉस रोड्स ने, इन्हों
0: बिल्कुल
1: के उत्ते ही सही ट्रैक पकड़ने की लोड़ होंगी है। तो बड़ी वधिया गल तुसी कीती। वैसे तुसी डॉक्टर भी हो, हुण मैं जे निजी सवाल पूछा कि तुसी डॉक्टर हो MBBS हो फिर तुसी ट्रैक बदलते हो फिर तुसी सिविल सर्विस चाहते हो, ये किवें डॉक्टर बनने का ट्रैक किवें सी ते उस तो बाद जिहड़ा टर्न लिया वो किवें जिंदगी च आया?
0: डॉक्टर बनन दी जेड़ा सुपना सीगा वो एक्चुअली इस जड़ी मैं गल कह रहा सी मेरे पेरेंट्स नहीं सी, मेरा सुपना नहीं सीगा, जस्ट
1: जी
0: दैट कि उन्होंने ग्रूम इस तरह का किया कि पढ़ाई से नॉर्मली अपना ठीक रहे, अपने क्लास च पीछे वाली कतार च ना हो अगली कतार च रहे, 7वीं 8वीं तक यही चलता रहा, खेडों च भी ठीक सीगा,
1: हाँ
0: खेड
1: जी हाँ
0: कूद भी
1: जी
0: ठीक लेंदे सी।
1: ठीक है
0: जिहड़ी गल
1: जी
0: मैं आखी कि 8वीं जदों एक क्रॉस पॉइंट आया कि बोर्ड के पेपरों को बड़ा हवा बनाता, साढ़े टाइम से 8वीं बोर्ड की होंगी सी,
1: 8वीं बोर्ड दी। हाँ जी हाँ
0: कहते जी
1: जी
0: बोर्ड का पेपर है तो ये तो चंगा तुम्हें करना ही करना, इस
1: ये
0: ज़्यादा
1: तो
0: कोई वो है ही नहीं, हल ही नहीं
1: हाँ
0: हैगा।
1: जी हाँ जी
0: 8वीं से मेहनत की उदों ही गल्ला कही गया कि जी 8वीं पास कर लो फिर तुम्हें लैके जावे कितने, असं भी नाल
1: हाँ
0: करा,
1: वाह जी
0: हो
1: वाह
0: गई पास हो गई 8वीं संभव।
1: ठीक है
0: 9वीं अच्छा एक आदत शुरू तो पवाई कि पेपर रीडिंग नहीं, न्यूज़ पेपर तुम शुरू तो पढ़ते रहो, बुक्स वगैरह GK की बुक्स है या होर कोई कंप्लीट
1: अच्छा
0: डिस्क्रिप्शन की
1: अच्छा
0: बुक्स
1: जी
0: है, ये हमेशा आदत साढ़े घर से कि मंथली एक मैगजीन साढ़े को आती सी, पेपर साढ़े को 3 लैंग्वेज के आते
1: ये
0: आते
1: प्लस
0: सी,
1: पॉइंट्स
0: ये प्लस पॉइंट
1: बिल्कुल
0: एक ग्रूमिंग की जी मैं गल आ रहा
1: हाँ जी हाँ
0: सी
1: जी
0: कि
1: ठीक है
0: तिने तिने लैंग्वेज के पेपर साढ़े घर से आते सी, हिंदी
1: जी जी
0: पंजाबी इंग्लिश तिने शुरू तो ही बचपन तो ही पढ़ते सी। ते फिर 9th 10th होया तो बायो च इंटरेस्ट चला गया कि चलो ठीक है बायो पढ़ के देख लेंगे, 10th दे विच जो क्लियर होया तो आई हैड प्रिपेयर्ड माई माइंड कि बायो लैनी है कि डॉक्टर जरा है बनना है, किसी ने थोपिया नहीं,
1: अच्छा अच्छा
0: सपना
1: ठीक है ठीक
0: पेरेंट्स
1: है
0: का सीगा पर उदों थोपिया नहीं गया कि तुसी बनना है, उदों तक माइंड
1: आप
0: बन
1: ही
0: गया
1: तुसी सोच
0: बिल्कुल
1: अपना इन्हों अपना सपना बना लिया ठीक
0: बिल्कुल कि बनना हैगा, मेडिकल ले
1: जी
0: ली,
1: जी जी
0: नाल थोड़ा मैथ्स इंटरेस्ट सी, नॉन मेडिकल वैसे ऑप्शनल रख ली,
1: और क्या
0: उदों
1: बता, मतलब तुसी ट्रैक छड्डिया कोई नहीं दोनों भी नाल ही रखे।
0: उन्होंने दिनों जो जे मेरे फ्रेंड से वो NDA का पेपर देने जा रहे थे,
1: हाँ जी हाँ
0: मैं कहा कि
1: जी
0: चलो पता नहीं डॉक्टर बनाएंगे नहीं बनाएंगे,
1: ठीक
0: पेपर
1: ठीक हाँ जी
0: दे चुके थे कि NDA का पेपर भी देने चले गए,
1: हाँ जी
0: रब दी मैं दोवें जो है वह प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, डॉक्टरी का क्लियर हो गया।
1: क्या
0: उस
1: बात
0: वेले मतलब चीज़ा वही हैं कि जरूरी नहीं कि तुम दोवें एक साथ
1: सही
0: टेकअप
1: ट्रैक पे
0: करो,
1: जा रहे थे तुसी।
0: बट तुसी जड़ा बच्चा उस स्टेज से होंगे 11वीं 12वीं की वो सामने ये ऑप्शन होंगे ने बैंकिंग दे,
1: जी।
0: जिस किसी को लगता है कि बैंकिंग से जाना है वो कॉमर्स के थ्रू अपनी तैयारी उस तरह की कर सकता है, किसी को लगता है CA बनना है मैं,
1: सारा
0: किसी को
1: जोड़ा
0: लगता है
1: बिल्कुल
0: इंजीनियरिंग करना है, दैट इज द स्टेज जो 9वीं 10वीं दे अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हो, प्लस वन
1: बिल्कुल
0: दे टेक ऑफ करते हो, उस तो
1: जी
0: बाद
1: जी
0: भावें CA बनो, इंजीनियर बनो,
1: हाँ
0: टीचर
1: जी हाँ
0: बनो,
1: जी
0: अपने डॉक्टर बनो, आर्मी से जाओ, पुलिस से जाओ, वो ताड़ी जड़ी है उस वेले ताड़ा डिसीजन लेना जरूरी होंगे। तो दोनों जो मेरे क्लियर हो गए ਤੇ